खबरदार करती हैं, अगर छुट्टी भी बहुत मंसूबा बंदी के साथ हो तो वो भी जहन को थका सकती है। हकीकी जहनी आराम मालूमात के बहाव को कम करने और फैसलों की तादाद घटाने से मुमकिन है। यानी हर रोज एक नया शहर, नया अजायब खाना, मुसलसल मंसूबा बंदी, ये भी जहन के लिए एक मैराथन बन सकता है। डिजिटल दुनिया जहन को कैसे मुतासिर करती है? सोशल मीडिया और स्क्रीनें जहन को आराम की जगह दिए बगैर मुसलसल मुहरिकात फराहम करती हैं। इससे तवज्जो मरकूज करना मुश्किल हो जाता है। कितनी बार ऐसा हुआ कि कुछ पढ़ते या देखते हुए आपने खुद को फोन चेक करते हुए पाया हो? ज़हनी तातील कैसे की जाए? अब्बे याबूस के मुताबिक ज़हनी तातील खाली जगह के लिए जगह बनाने से शुरू होती है। ऐसे घंटों के लिए जगह बनानी चाहिए जो बगैर मनसूबा बंदी के गुजरे। फितरत में वक्त गुजारना चाहिए और स्क्रीनों से शहूरी तौर पर दूर रहना चाहिए। आमाल जहन को अल्फा व्यू मोड में ले जाते हैं और उसे आराम देते हैं। अच्छा, अगर आप छुट्टी नहीं ले सकते तो फिर रोजमर्रा जिंदगी में छोटी तब्दीलियां कर सकते हैं। एक कप चाय को महसूस करते हुए पीना भी जहनी वक्फे का बाइस बन सकता है। याहूस कहती हैं, मुख्तसर चहलकदमी, फितरत से राबता और सांस की मशकें जहन को ताज़ा करती हैं। अहम बात शौरी तौर पर रुकना होता है। तो बच्चों वाले खानदान क्या करें? बच्चों वाले खानदानों के लिए सूरतहाल और भी पेचीदा हो सकती है। याहूस की तजवीज़ वाज है, रोजमर्रा मामूलात में वाज हदूद कायम करें, वक्फे पैदा किए जाएं, इनफरादी वक्त मुतायन किया जाए, मियां बीवी के दरमियान फैसलों का बोझ तकसीम होना चाहिए। हर बालिग डिजिटल डेटा किस कर सकता है? याद रखें, अगर आप आराम करेंगे तो अपने बच्चों के लिए भी ज्यादा सेहतमंद वालदैन बनेंगे। वक्फे पैदा किया जाए, इनफरादी वक्त मुतायन किया जाए, मियां बीवी के दरमियान फैसलों का बोझ तकसीम होना चाहिए। हर बालिग डिजिटल डिटॉक्स कर सकता है। याद रखें, अगर आप आराम करेंगे तो अपने बच्चों के लिए भी ज्यादा सेहतमंद वालदैन बनेंगे। ज़हनी सेहत को नजरअंदाज करने की कीमत। राबिया याबूस खबरदार करती हैं, ज़हनी सेहत को तवील अरसे तक नजरअंदाज करना इंसान की मजमूई जिंदगी के मयार को संजीदगी से मुतासिर कर सकता है। तवज्जो की कमी, याददाश्त के मसाइल, बर्न आउट सिंड्रोम, फैसला साजी की सलाहियत में कमजोरी, ये सब जहनी गफलत के तवील मुद्दती नताइज हैं। तो आज ही से अपने जहन को आराम देने के लिए आप क्या कर सकते हैं? राबिया याबूस की तजावीज बहुत सादा मगर मौसर हैं। वक्त को सुस्त करने के लिए घड़ी न देखना, हाल ही में जीने की कोशिश करना, सांस और आगाही की मशकें करना, कुदरती और पुरसकून माहौल में मुख्तसर चहलकदमी करना, मौसीकी सुनना और लिखना। सामिन, जहनी थकन नजर नहीं आती मगर हकीकत है। जैसे हमारे जिस्म को आराम की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे जहन को भी आराम चाहिए। और याद रखें, हकीकी आराम गैर फ़ाल नहीं बल्कि एक शऊरी अमल है। शायद आज आप अपनी चाय का कप मुख्तलिफ अंदाज में पिए, शायद फोन को एक तरफ रखकर खिड़की से बाहर देखें, शायद सिर्फ सांस लें और छोड़ें, क्योंकि जहन को भी छुट्टी चाहिए। अगले पॉडकास्ट में फिर मुलाकात होगी। अपने जहन का ख्याल रखें।

0: कर ली है। चीन ने कहा है कि जापान इलाकाई सिक्योरिटी तावन और आज़ाद खुले हिंद पहरुल का हल हिकमत अमली को फौजी तोसी के लिए बतौर पर्दा इस्तेमाल कर रहा है। ग्लोबल टाइम्स की हफ्ते के रोज़ शाया करदा खबर के मुताबिक चीन वजारत दिफा के तर्जुमान जियांग बीन ने जापान की वजीर आजम सनाए ताकाइची के सिक्योरिटी ताल्लुक को मजबूत बनाने के जेर मकसद किए गए आस्ट्रेलिया और वियतनाम दौरों के हवाले से कहा है कि टोक्यो धड़ों के दरमियान तसादम को फरोग दे रहा है। टोक्यो के ये इकदाम इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए खतरा हैं। जियांग ने कहा है कि जापानी हुकाम नाम नहाद आज़ाद और खुले हिंद बहरुल का हल और सिक्योरिटी तावन के बहाने से आलमी धड़ों के दरमियान तसादम को हवा दे रहे और छोटे हल्के तश्कील दे रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि यह हरकत दीगर ममालिक की स्ट्रेटेजिक सलामती और मफादात को नुकसान पहुंचा रही है और जापान को अपनी फौजी तरक्की पर आयद पाबंदियों से निकलने का जवाब फराहम कर रही है। हम इसकी सख्ती से मुखालफत करते हैं। जियांग ने जापान में जंग अजीम दोइम के बाद नाफिज किए गए पुरअमन आइन में तरमीम के मुतालबात पर भी तनकीद की और कहा है कि ऐसे इकदाम खुफिया फौजी ताकत बढ़ाने से खुली जंग की तैयारी की जानब मुंतकली की अक्कासी करते हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने हफ्ते के रोज क्रेमलिन में स्लोवाकिया के वजीर आजम रॉबर्ट फिको से मुलाकात के दौरान कहा है कि रूस स्लोवाकिया की तवानाई की जरूरियात पूरी करने के लिए हर मुमकिन इकदाम करेगा। स्लोवाकिया यूरोप के उन चंद ममालिक में शामिल है जो अब भी रूस से तेल और कुदरती गैस खरीदते हैं। स्लोवाकिया सोवियत यूनियन की तामीर करदा द्रोजपा पाइपलाइन के जरिए रूस से तेल हासिल करता है जबकि कुदरती गैस तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन के जरिए मुल्क तक पहुंचती है। फिको दूसरे जंग अजीम में नाजी जर्मनी के खिलाफ सोवियत यूनियन की फतह की याद में मुनक्कदा तकरीबात में शिरकत के लिए मास्को में थे। पुतिन ने कौमी टेलीविजन पर नशर होने वाले बयान में कहा है कि हम स्लोवाकिया की तवानाई के वसाइल की जरूरियात पूरी करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। अगरचे रूसी सरकारी ज़राए ब्लाग ने इससे कबल इतला दी थी कि फिको मास्को के रेड स्क्वायर में मुनक्कदा परेड तकरीब में शिरकत करेंगे लेकिन फिको तकरीब में शरीक नहीं थे। यूरोपीय यूनियन का रुकन मुल्क स्लोवाकिया रूस के साथ अपने सियासी ताल्लुकात को बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है और इसका मौकफ है कि अपने बुनियादी ढांचे को रूसी तवानाई ज़राए के मुताबिक तामीर करने के बाद रूसी सप्लाई तर्क करना बहुत महंगा साबित होगा। पुतिन ने कहा है कि मुझे यकीन है कि यूक्रेन में जंग खत्म होने वाली है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि उन्हें यकीन है कि यूक्रेन में जंग खत्म होने को है। सहाफियों के साथ गुफ्तगू में पुतिन ने कहा है कि वो यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात के लिए तैयार हैं लेकिन इस सिर्फ अमन मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए। उन्होंने कहा है कि कोई भी मुलाकात किसी तीसरे मुल्क में होगी और तवील मुद्दती अमन मुआहदे की हतमी शराइत पर इत्तफाक के बाद ही कायम होगा। सदाए तुर्की से खबरें खत्म हुई।
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
6: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Ovdi Radio Glas Türkiye.
8: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
9: Qui è la radio La Voce della Turchia.
10: Esta es La Voz de Turquía.
11: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
12: Юфлет зъри и Турция.
13: 这里是 土耳其 之声广播电台.
14: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
15: Да, Турция غږ радио да.
16: خصوم ترکیه زاین رادیو گایان.
17: Petersia Radio Sadburi Türkiye Sıkma.
18: Ovada Türkiye Ünü Radyosu.
19: Aici Radio Voce Türkiye.
3: Говорит голос Türkiye.
4: Эфирде Türkiye Ovası.
7: Gitleyer Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Ye Sıday Türkiye.
9: Anlavatkın ola Türkiye Ovası Radyosu.
10: Edo İfonetis Türkiye.
2: Oldi Radio Glas Türkiye.
1: Gider Radio Cumhuriyet Türkiye.
15: İni adalah Radio Suara Türkiye.
8: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
13: Este es Radio Voz de Türkiye.
18: Kochira wa Türkiye no koe radio des.
16: Zboru wa glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radio.
19: It Türkiye Hangi Radio ya?
2: Oldu Radyo Glas Türkiye.
14: Türkiye önemli.

अगर साथ में एक प्याला दुक्का हो तो वो सख्ती अचानक मिट्टी की शफकत में बदल जाती है। मुट्ठी भर अज्जा, जरा सा सब्र लीजिए, यह आपके लिए सिर्फ एक खाना नहीं बल्कि एक तर्ज जिंदगी है। आखिर ये तरकीबें इतनी अहम क्यों हैं? क्योंकि आज सिर्फ जमीन ही नहीं, याददाश्त भी एक मैदान जंग है। एक माँ का बावर्ची खाने में चम्मच चलाना या एक बाप का जैतून के दानों को एक एक करके चुनना कोई आम काम नहीं। ये खामोश और पुरवकार मुजाहिमत है। मस्कन की एक प्लेट, एक अदद फलाफिल या जैतून के तेल का एक कतरा, ये हम भूले नहीं कहने का सबसे लजीज अंदाज है। वतन कभी नक्शा नहीं होता, बल्कि उस नक्शे पर रहने वाले लोगों का वो मुकद्दस दस्तरखान होता है जहां वो मिलकर बैठते हैं, एक ही बर्तन से खाते हैं और वही कहानियां सुनाते हैं। इस दस्तरखान पर माजी का दुख, आज की तकलीफ और मुस्तकबिल की वो अजीम सहर मौजूद है। इसीलिए फलस्तीन की कहानी कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि ये हर बावर्ची खाने में हर सुबह दोबारा पकती है। सामीन अगली किस्त में हम इस कहानी के सबसे मजबूत सुतूनों में से एक, यानी इन दस्तरखानों के असल मैमार पर तवज्जो देंगे, फलस्तीनी औरत। हम हर लुक्मे के पीछे छुपी मेहनत और हर कहानी के पीछे उस बावकार रावी के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा नोट ये है, किसी कौम का जायका उसकी याददाश्त होता है, और जब तक याददाश्त जिंदा है ये कहानी कभी ख़त्म नहीं होगी। आइंदा हफ्ते तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।